गंगन के अंदर से एक नल बनाया है। अगर वो पानी का मुहान ही बंद कर देगी तो ये लोग कितने दिन भूखे प्यासे लड़ेंगे।

0: இளம்பு பிரேக் டைம்.
1: ओए साथी हेर न यो क्या खतरा समाचार आइसक्यो. बाप रे, अब चाहिँ के हुने हो?
2: खै खै के आयो त्यस्तो? यत्तिकै पत्याइहाल्छ यो रोहन. सामाजिक सञ्जालमा आउँदैन यत्तिकै पत्याउनु पर्छ त. मिथ्या र भ्रामक सूचना हुन सक्छ.

Elembu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: 뭐지? 뭐지? 뭐지? 뭐지? 어, 내가 어떻게 하니? 자자자자자자.
1: प्यार से दे रहे हैं रख लो
0: देख देख देख अरे और ये बाप रे बाप स्टाइल तो ब्लास्टिंग मारे लू हो दो चार भी लिखवा ले बुका अरे रे ए ए
1: ओ जिगर सलाट

Elumbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: सोल्टिनेहरू पटन त गफै दिएर त हो नि आजकल, साँचो बोलेर कामै छैन। ल अब घान्द्रुक डुलौ।
1: बल्ल मजा
2: आयो। अब म खान जाऊँ।
3: ये ल जाऊँ।